0: அழகான பாடல்களோடு நிறைவு பெறுகிறது இன்றைய பவனி வரும் குமரி நிலா நேரலை நிகழ்ச்சி. நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நேயர்களுக்கும் கலந்து கொள்ள முயற்சித்த நேயர்களுக்கும் கேட்டு ரசித்த அத்துணை நேயர்களுக்கும் நன்றிகள். இரவின் அமைதியில் நாளை வெற்றிக்கான கனவுகளை விதைப்போம், வெகு விரைவில் வெற்றி கனிகளை அறுவடை செய்வோம். மீண்டும் சந்திப்போம் நேயர்களே. நிகழ்ச்சியில் வரை உங்களோடு RJT ஜெபின் நிக்ஸ்லேன். நன்றி நேயர்களே. தொடர்வது அகில பாரத சங்கீத சபா டெல்லி அஞ்சல்.
1: ये आकाशवाणी है. संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन. अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित AR पटवर्धन जी से प्राप्त की. तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की. पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं. आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं. आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं. विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है. मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी.

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पेहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।